जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: dhe.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: के लिए इब्रत हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं।

0: अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
2: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
3: जॉइन अस एवरी थर्सडे at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
4: Suleiman Rafiq,
5: Leo Nizal,
6: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
5: Tune in on 105.1 FM.
6: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
3: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

एक खुशी होती है उसके दिल के अंदर, और फिर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, जान लो अल्लाह तकवा वालों के साथ है। तुम अल्लाह की इबादत करोगे क्या बन जाओगे? मुत्तकी। जब मुत्तकी बन जाओगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की मदद मिलेगी। एक और जगह पर आता है कि जन्नत भी मुत्तकीन के लिए, जन्नत मिलेगी। एक और जगह पर आता है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का राह पैदा कर देता है। यजअल लहू मखरज, उसके लिए मखरज बना देता है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। अब देखिए कि जिंदगी में कितनी मुश्किलात हम पर ऐसी आती हैं कि जब हमें समझ नहीं आती कि हम किधर को जाएं, क्या करें, क्या फैसला करें, किस तरफ निकलें। बाज़ों का ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हैं। होती है ना मुश्किलात, सब कुछ ना कुछ मुश्किल एक्सपीरियंस करते हैं। बाज़ लोग ऐसी प्रॉब्लम में आते, वो कहते हैं औलाद नाफरमान है, शौहर बद अखलाक है, रिज़्क का कोई सामान नहीं, घर कोई नहीं, बीमार है, फलां है, लगता है सारा कुछ ब्लॉक हो गया। अच्छा, फिर वो उस वक्त कहते हैं हम पे किसी ने जादू कर दिया। ये शैतान हमारा दिमाग किसी और तरफ ले जाता है कि जादू है, फलां ने रोक दिया, फलां ने बंदिश कर दी, मालूम नहीं क्या हो गया। नहीं, ये ज़िंदगी के इम्तिहान हैं, इनसे कामयाब होने के लिए तकवा चाहिए। जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा। जब कभी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में पेश आए, मत सोचे उसने नज़र लगा दी, उसने हसद कर दिया, उसने जादू कर दिया, और किसी और ने मालूम नहीं कोई बंदिश कर दी। ये सब शर अगरचे मौजूद है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ जाने की बजाय फौरन अपने अंदर सोचे मैंने क्या गलती की। कुरान मजीद में आता है तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से पहुंची। बाहर नहीं देखिए, अंदर देखिए, यहाँ क्या गलती, और उस गलती से निकलने का रास्ता सोचिए कि वो गलत काम मैं छोड़ूं जो मैं कर रही हूँ। और वो गलत काम इंसान सिर्फ अल्लाह के डर से छोड़ सकता है। और कई एक रिसर्च से ये बात पता चलती है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर खौफ है। यानी जब इंसान डरता है किसी चीज से तब बचता है, तब कुछ करता है। डर इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। अब मौत का डर होता है तो इंसान ऐसी चीज खाना छोड़ देता है जिसका अंजाम मौत हो सकता है। पसंदीदा तरीन चीजों का परहेज शुरू कर देता है कि नहीं ये खाया तो मर जाऊंगा। तो तकवा जो है वो इंसान के लिए बेशुमार फायदों का सबब है। तकवा किस से पैदा होता है? इबादत से। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा और इबादत लाजम और मलजूम है। इबादत करोगे तकवा होगा, तकवा आएगा तो इबादत को दिल चाहेगा, मुश्किलात दूर होंगी, और फिर अल्टीमेटली अंजाम बखैर होगा। अब इबादत कैसे करो? ये नहीं मनमाने तरीकों से इबादत करो। इबादत करो से मुराद यहाँ क्या है? उस तरीके पर अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो जो तरीका उसको पसंद है, ठीक है? अपनी मर्जी के तरीकों पर नहीं, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करो ताकि तुम मुश्किलात से बच सको। फिर मजीद दलाइल दिए गए क्यों अल्लाह की इबादत करो, क्यों अपने रब की इबादत करो। इसलिए कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध फिराशा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बना दिया, बिछौना बना दिया, आरामदेह जगह बना दी। अगरचे इंसान की तखलीक भी क्या है? एक मुश्किल काम, लेकिन उससे बड़ा काम एक और भी है। जैसे कुरान मजीद में सूरत अन्नाज़ियात 27-28 में आता है अअन्तुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा रफा समकहा फसव्वाहा व अग्तश लैलहा व अखरज दुहाहा। क्या तुम्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या आसमान को?

0: उसे उसने बनाया। हम तो आसमान को हाथ नहीं लगा सकते, बनाना तो दूर की बात, पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, तो उसको बनाना तो इम्पॉसिबल। और ये सब जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता इस आसमान को, तो फिर इबादत किसी और की क्यों? अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिनाअ। फिर इसी तरह एक और जगह पर आता है, लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास। आसमान और जमीन की तखलीक ज्यादा बड़ी चीज है लोगों की तखलीक से, इंसानों की तखलीक से। तो अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ, वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया। एक और आयत में आता है, अलम नजअल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को मिहाद नहीं बना दिया, एक झूले की तरह नहीं बना दिया, एक पंगूड़ा नहीं बना दिया कि जो तुम्हें लेके चल भी रही है और तुम आराम से सोए हुए उसमें सब काम कर रहे हो, और आसमान को एक प्रोटेक्शन की चीज, क्योंकि छत इंसान को क्या फीलिंग देती, प्रोटेक्शन। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आसमान का नीला रंग नजर ना आए और सिर्फ ऊपर आसमान पे गैस सी और गुबार सा नजर आए, तो कैसा दिल घबराता है ना? कभी ऐसा होता ना, धुंध छाई भी होती है। अगर आप सुबह उठें, खिड़की खोलें और बाहर आसमान नजर ना आए, धुंध नजर आए, तो क्या फीलिंग होती, घबराहट सी शुरू हो जाती है ना। सोचिए अगर रोज ही ऐसा मंजर होता फिर, और रात को भी इसी तरह अगर सितारे नजर आते हैं या चांद नजर आता है तो दिल खिल जाता है, हा? लेकिन अगर कुछ नजर ना आए और अंधेरी सी रात हो, शदीद घबराहट हो जाती। तो अल्लाह सुबहान व तआला खास तौर पर दो नेमतें जो हर वक्त हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जमीन और आसमान की, उनकी तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं। देखो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया, स्प्रेड कर दिया, और आसमान को छत बना दिया। और एक और आयत में इसकी मजीद वजाहत होती है, वबनैना फौकुकुम सबअन शिदादा, तुम्हारे ऊपर हमने सात मजबूत यानी तहें बनाई। और एक और जगह पर आता है, वजअलना समाअ सक़फन महफूज़ा, हमने आसमान को महफूज छत बनाया, प्रोटेक्टेड, तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। वरना आसमान पर इतना कुछ है, इतने सितारे सैारे, और वो गिरते भी हैं। अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान हिफाजत की दीवार ना होती तो वो सारी चीज़ें आके हमसे टकराती और ज़िंदगी बाकी ना रहती। तो अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं हमें, ताकि हम अल्लाह की इबादत की तरफ मायल हों। वह अनज़ला, और उसने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, मा अन पानी। अब यहाँ समा से मुराद वो दूर का आसमान नहीं, इससे मुराद आसमान और ज़मीन के दरमियान की बुलंदी की जगह है। जैसे एक और जगह पर आता ना, वह सहाबिल मुसख़र बैन समाई वल अर्द, कि वो बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख़र है, यानी यहाँ मुराद क्या है, बादल, बादलों से पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही, फिर निकाला उसके ज़रिए, किसके ज़रिए, पानी के ज़रिए, क्या, मिनस समराती, फलों में से, रिस्कन रिस्क, लकुम तुम्हारे लिए, यानी फलों की शक्ल में तुम्हारे लिए रिस्क निकाला, तो तुम क्या करो, फला तज अलू, ना तुम बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई मद्द मुकाबिल, कोई शरीक, अल्लाह के मुकाबले में किसी और को माबूद मत बनाओ, किसी और की इबादत न करो। वह अन तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, बारिश अल्लाह ने बरसाई, जमीन से फल अल्लाह ने निकाले, सारा रिस्क अल्लाह ने दिया, सब मानते हैं ना। कोई मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक, सब यही कहते हैं या नहीं कहते, सब ये कहते हैं कि हाँ वही है जिसने ये सब कुछ किया, किसी इंसान ने नहीं किया। तो जब ये सारे काम उसके हैं, तो फिर इबादत भी उसी की। इय्याका नाबुदु, क्यों इय्याका नाबुदु, क्योंकि ये सारा कुछ उसने हमें अता किया है। अब देखिए कि शायद से क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं। पहली बात ये पता चलती है कि अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान किए, उसके एहसान सबसे ज़्यादा हैं हम पर, जिनमें से सबसे पहला एहसान हमारी तख्लीक। हम अपने जिस्म के बाल बाल के लिए अपने रब के एहसान मंद हैं। अगर वो हमारे सर पे बाल ना उगाता तो कोई और उगा नहीं सकता, अगर वो हमारा नाक ना बनाता तो कोई और यहाँ नाक ना लगा के देता, वो सुनने की ताकत ना देता तो हम सुन नहीं सकते, वो पाँव ना देता तो चल नहीं सकते। तो ये सबसे पहला एहसान है उसका हम पर। दूसरा एहसान ये है कि उसने जिस ज़मीन पर हमें उतारा वो ज़मीन एक बिस्तर की तरह है। जैसे बिस्तर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमको, आराम मिलता है, बिस्तर नरम होता है और बिस्तर बाएं सुकून होता है, यानी बिस्तर पे सोते भी हैं सुकून भी पाते हैं। और क्या बात पता चलती है कि आसमान को उसने छत बनाया जो हमारे लिए बाएं सुकून है, यानी ज़मीन और आसमान को हमारे लिए बेशुमार फ़ायदों की चीज़ बनाया, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो यहाँ नज़र आ रहा है वो क्या है, सुकून और खुशी। क्योंकि फर्श भी बिछाना भी सुकून देता है और छत भी सुकून देती। और क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ने हमारे लिए पानी उतारा है और उस पानी के ज़रिए फल पैदा किए। पानी पीकर भी इंसान को क्या मिलता है, सुकून मिलता है, फल खाकर भी क्या मिलता है, सुकून, रिस्क पाकर सुकून। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, बायस सुकून, बायस राहत, बायस खुशी। यहाँ अल्लाह ताला अपनी नेमतों का ज़िक्र कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, शुक्र अदा करें, ताकि हम उसी की इबादत करें। तो पहले कहा इबादत करो, फिर कहा फला तजलू लिल्लाहि अंदादन, शिर्क ना करो। तब आप देखिए शुरू से कुरान मजीद में हमने अगर पढ़े तो कितनी चीज़ें हमें पता चली, तक्वा, कुफर, मुनाफ़कत और इबादत, तौहीद और शिर्क। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट शुरू में वाज़ कर दिए गए हैं कुरान मजीद में। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वह अंतम तालमून, इससे ये बात पता चलती है इल्म के बाद इनकार ज़्यादा बड़ा जुर्म है। वह अंतम तालमून, किस चीज़ से इनकार, इबादत से इनकार। अब आप देखिए कितने ही लोग हैं जब उनसे कहा जाता है अकीम अस्सलात, नमाज कायम करो, क्या करते हैं, इकरार या इनकार। उसी रब का खाते हैं, उसी रब की ज़मीन पे चलते फिरते हैं, उसी रब के दिए हुए सुकून से सोते हैं, उसी रब की बात नहीं मानते। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सारी सारी ज़िंदगी उसकी इबादत का इनकार करते रहते हैं। तो ऐसा करना इंतहा दर्जे की नाशुक्री है, बेवफाई है। सब कुछ दिया उसने और हम बन गए गैरों के। और ये एक हकीकत है कि जब इंसान अल्लाह का नहीं बनता तो फिर शैतान का बन जाता है, नफ्स का बंदा बन जाता है। लिख लीजिए जुमला, जो बंदा अल्लाह का बंदा नहीं होता फिर वो नफ्स और शैतान का बंदा बन जाता है। नफ्स और शैतान, ये हमारा नफ्स होता है, हम अपने दिल के ग़ुलाम बन जाते हैं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं, हम नेमतों को अपना हक समझने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सो वट अगर है तो है, एहसान भूल जाते हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने एक शेर कहा है, हरबु मिन अर्रिक लज़ी खुलिकु लहू व बुलू बिरिक नफ्स व शैतान। लोग अल्लाह की ग़ुलामी से भागे, अल्लाह के बंदे नहीं बनना चाहे, तो वो नफ्स और शैतान की बंदगी की आजमाइश में पड़ गए। फिर उनका नफ्स उन्हें जिधर चाहता है ले जाता है, फिर उस नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, थकते हैं थकाते हैं लेकिन कहीं चैन नहीं पाते। आप देखिए कि अल्लाह का बंदा बनने में नतीजा क्या निकलता है कि इंसान के अंदर सुकून आता है, इंसान को अल्लाह की मदद हासिल होती है, तकवा मिलता है ना। अल्लाह की इबादत का नतीजा क्या है? तकवा। और तकवा का फ़ायदा क्या है? अल्लाह की मदद और जन्नत। और जब इंसान उससे इनकार करता है तो किस में आ जाता है? शैतान के हाथों, नफ्स के हाथों खिलौना बन जाता है।
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Tune in and listen to Inspire FM every day to be motivated.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
9: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
10: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.

0: वो जो है ना खसारे में है, वो अभी भी हम फायदे में चल रहे हैं, क्योंकि आखिर में कहा गया मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए, कोशिश कर रहे हैं ईमान लाने की, पहले तो ईमान को समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही अपनी जगह पे जिग्सॉ पजल की तरह फिट हो जाएंगी। और दूसरा, और नेक अमल करते रहे, कोशिश करते रहे कि यार सही व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, और हक बात की तलकीन, ट्रूथ क्या है उसके बारे में बात करते रहे, और सब्र की ताकीद, जब तक वो चीज़ होती नहीं है आप साथ साथ सब्र करते जाएंगे। मुझसे अभी कल किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है जब इस किस्म की कोई बात आती है तो लोग सरप्राइजिंग किस्म के ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में बात आ रही है तो कई लोग क्या कुछ कह रहे हैं। मैं कहा मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो रियलिटी चेक मिलता रहता, बड़ी अच्छी बात, मुझे ज़रा दुख नहीं होता किसने क्या कहा, किससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। जितना आपको रियलिटी चेक मिलेगा उतना आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, उतना आप अपना कंपस ठीक करेंगे, उतना आप अपना हिसाब किताब रखेंगे, उतना अपने आप पर इंसार करेंगे, और उतना यू आर गोइंग टू पुट ऑल योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। कोई बात नहीं, कोई बात किसी तरीके से भी कोई बात नहीं। माँ बाप छोड़ जाते हैं कोई बात नहीं, बहन भाई छोड़े कोई बात नहीं, कुछ कोई भी कभी भी छोड़ जाता है, छोड़ सकता है, उसको फ्री मिल मिली है। आप नाराज़ होते हैं हो जाए, गुस्सा करते हैं करें, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लेकिन उनकी मर्जी आप ये हो नहीं, मतलब आप उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। बस यही इंसान है और यही रब के कानून है और इसी के बीच में से हमने निकलना है।
1: इस बात का डर होता है कि कोई छोड़ के चले जाएगा जो जो आपके बहुत क्लोज हैं?
0: हाँ, पहले बहुत होता था, फिर जब वो छोड़ गए या वो मर गए तो वो भी ख़त्म हो गया। देखें, हम में से ना साइंस ये बताती है, नंबर्स ये बताते हैं कि हम जिंदगी में जिन जिन चीज़ों से डरते रहते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो होता ही नहीं। तो एक बात और, ये डर कब होते हैं जी? ये डर तब होते हैं, ये किसी और दिन सवाल पूछेगा, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है, वीडियो की, लेकिन ऑडियो हो रही है। ये जब तक हम इंसान अपना, जो बंदा भी अपना, हाँ, मैं जब तक अपना होमवर्क नहीं करता था तब तक मैं डरता था, जब तक मैंने 100% सिंसेरिटी से काम नहीं किया था, जब तक मैं लोगों को सच नहीं बता सकता था, जब तक वो डिज़र्व नहीं करते थे और उनको मैं दे रहा था, अब जब वो नहीं डिज़र्व करते मैं नहीं देता, मैं रोक के उसको दे देता हूँ जो डिज़र्व करता है, चाहे वो कोई भी हो। अब पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर देता, कहता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मैं सबको बताता हूँ, हर बंदे को, मैंने अपने माँ बाप से लेके हर बंदे को उनकी सारी खराबियाँ सारी बुराइयाँ बताई हैं, अपनी भी खराबियाँ बुराइयाँ मैंने हर बंदे को बताई, क्योंकि अब मुझे इस बात का ऐसा, जब तक आप डरते रहेंगे ना वो, तब वो चीज़ें, यू मेक दीज थिंग्स हैपन बिकॉज इट्स इन योर हेड, यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। अगर आप डरते रहेंगे तो वो ही डर आपके सामने खड़े होते रहेंगे, जब आप डर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा लोग छोड़ते नहीं, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, समझ रहे हैं? मैं जो पहले डरता था कि लोग मुझे छोड़ जाएंगे, फलां छोड़ जाएंगे, फैमिली छोड़ जाएगी, फलां छोड़ जाएगी, मैं अलहदा से जिधर भी जाता हूँ मैं एक अलहदा से एक छोटा सी जगह बनाता हूँ जहाँ मैं आराम से जी सकूँ, जहाँ मुझे लोग बॉदर ना करें, क्योंकि हर बंदा मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, खाने पे लाना चाहता है, फलां करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। मैं कल इतने सालों के बाद मीट एंड ग्रीट पे गया हूँ, मैं कभी नहीं जाता, मुझ शान ने रिक्वेस्ट की थी, और शम्स एक शो आने वाला है और मुझे शम्स तबरेज़ और मौलाना रूम में इंटरेस्ट है, तो मुझे पता था उसमें कोई ख़ास चीज़ वहाँ मुझे नहीं मिलनी, बट फिर भी मैं गया और मैं देखना चाहता था कि क्रिएटिवली कैसे वो करते हैं। तो उन्होंने वही न तरसा न यहूदम न मुसलम चितद भी रे मुसलमाना, ये उनकी एक बहुत मशहूर एक नज़म है कि कुछ तो करो ऐ मुसलमानों कि मुझे तो मुझे बताओ, जो फिर बाद में बुल्ले शाह ने भी की थी कि ना मैं यहूदी हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, कौन हूँ मैं, ना मैं मिट्टी से बना हूँ, ना मैं पानी से बना हूँ, कौन हूँ मैं। तो इस तरह की एक बहुत खूबसूरत, तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, उसके साथ कोरियोग्राफी वगैरह बहुत अच्छी थी। तो मुझे अगर मुझे लोगों में जाने का शौक़ होता तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं बहुत कम कहीं बाहर जाता हूँ, और सिर्फ वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, या कुछ रिश्ते हैं जो इतने सालों से हैं, या मैं फ़ोन भी सिर्फ उन्हीं लोगों का उठाता हूँ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, या बाकी लोगों के साथ, और मैं जो काम अपना कर रहा होता हूँ ये सारी चीज़ें मेरी एनर्जी डिप्लीटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा काम के ऊपर जो मुझे करना है, और जब मैं करने बैठूंगा तो मुझे पता है मैं 2-3 दिन में सारा का सारा काम ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो बैठने में कभी कभी महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ जमाने लगे। तो कई लोग आपकी जिंदगी

0: And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
3: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
2: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
4: Every Friday at 5 p.m.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
6: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
7: This is the national and international news today, Tuesday, 14th of July for Inspire FM, read by Shahin Mirza. Iran hits two United Arab Emirate tankers in Strait of Hormuz as US carries out third night of strikes. And Widcombe suspect not known to prevent as counter-terrorism police take over investigation. No significant rain forecast for at least a week as UK heatwave continues. YouTube still recommending eating disorder videos to teens, research finds. Increased security for England and Argentina tie. Free school meal pupils falling further behind their peers, report warns. Andy Burnham cements Labour leadership with backing of 349 MPs. And that completes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
8: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ نے پاسداران انقلاب فورس کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کو جدید طیارے فروخت نہ کرے۔ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان برہموس کروز میزائل سسٹم سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
6: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.

अगर आप इंस्पायर एफएम के किसी प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए inspireFM.org और सुनिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम।

अब अगली बात हम करेंगे एहतिना में हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूँ, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, और जब आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है।

अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है, हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है, उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था उसको। हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज़ में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज़ है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगू, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफ़ा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो अब वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो, आपने सीख लिया एक दफ़ा, दो और दो जमा चार इल्म है ना, अब आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मज़ीद और इल्म सीखें और मज़ीद सीख लेंगे, उसके बाद मज़ीद और फिर मज़ीद और मज़ीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मज़ीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी PhD तक पहुँच गए, जब PhD में पहुँचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहिल से जब इंसान गुजरता है ना तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज़्यादा इल्म है वो उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है, वो एक दफ़ा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है, यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा कभी ऊंच कभी नीच, कभी ज्यादा कभी कम, कभी आगे कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे इल्म है इसका। आप ज़बान सीख सकते हो, आपने ज़बान सीख लिया, आप उसको ओन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज़ को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज़्यादा है, कोई और ही चीज़ है जिसको आप कभी ओन नहीं कर सकते। और क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर सकते और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफ़ा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह इल्म आपको एक दफ़ा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है। इल्म एक दफ़ा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो तो वो आपके पास ही रहेगा, इल्म सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा वो इल्म। किसी ने एक दफ़ा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाज़ा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, ए दिना हिदायत दीजिए, हम कितनी दफ़ा मांगते हैं? कम अज़ कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फ़र्ज़ 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है। और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कि सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज। और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मर्तबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मर्तबा हर रोज़ क्या मांग रहा है? हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। कुरान ने कुरान की अपने कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। तो कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है? पानी पीता है। एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया,

0: किसी और चीज़ की तरफ जिंदगी, नहीं नहीं नहीं, दो तीन घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर दो तीन घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी। आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के। इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ लेने से, हिदायत, एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है। आप मुझसे, आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्स कर लिया है। कुरान का हिफ्स करना इल्म है या हिदायत है? इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं। अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं, मालूमात हैं, हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो सका, हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से। क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है? यहाँ तक के हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है, और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका उसके मकासद में से एक मकसद क्या है? या अल्लाह, ये जोहर की नमाज होने लगी है, जोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े, इधर देखूं या इधर ना देखूं, ये कहूं या ये ना कहूं, ये जवाब मैसेज में भेजूं या ना भेजूं, इस तरह से इस डील को हाँ करूं या ना करूं, यू नो, इसके बारे में किसी से और बात करूं या ना करूं, फैसले करने होते हैं ना ये हर लम्हे में, और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे, हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है, और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा, हिदायत दे दे मेरे रब, अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी, उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और, इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फ़र्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दें और आप भूल गए, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी, और कोई आ रहा है बहुत प्यास लगी है, पानी दे दें प्लीज़ पानी, लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं भी लेके आता हूँ। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इन सिरात मुस्तकीम, वरना वो रहमत हो ही नहीं सकती, ये भी है इसके अंदर जिन अल्फाज में अल्लाह ने कहा है इहदिनस सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप अरबी में मुख्तलिफ असालीब मुमकिन है, आप ये भी कह सकते हैं इहदिना इलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना अलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना लिस सिरात, और ये भी कह सकते हैं इहदिनस सिरात, जैसे फातिहा में है, यानी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक हर्फ का अपना मकसद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर तरीके से इनका फ़र्क समझा देता हूँ। इहदिना इलस सिरात है अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता कि जो अस्पताल है वो किधर है, तो आप कहें यहाँ से सीधा जाएं, फिर राइट टर्न लें, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर 5 किलोमीटर जाएं, अस्पताल आ जाएगा। यह है इला, उसकी तरफ हिदायत देना। एक एक डेस्टिनेशन है, एक आपकी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ किसी को हिदायत दी जाए ना, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने जब जन्नत की तरफ पहुँचने का रास्ता समझा दिया ना, वो इला है, यहदीहिम इला तरीक मुस्तकीम। ये इला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो इला से मुराद होगी मालूमात। जब इला आएगा ना, तो वो कौन सी मालूमात हैं जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। दूसरा लफ्ज़ है अला सिरात, इहदिना अला सिरात। अला सिरात मुराद है मैं रस्ते में हूँ और रस्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और रस्ते में चलते हुए जो रुकावटें हैं उनको मैं कैसे, उनसे मैं कैसे गुजरूं फंसे बगैर या गुमराह हुए बगैर। यानी रस्ते पर चलते हुए क्या क्या हिदायत मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कहें हाँ वो अस्पताल तो 5 मील दूर है, लेकिन रस्ते में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़रा आप लेफ्ट पे रह जाना, या फलाना एक आएगा वो ये इशारा आएगा उस पर ज़रा साइड से गुजर जाना। ये क्या है, ए बिना अला अस्सिरात, इतना अला अस्सिरात, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, इहदिना लिस्सिरात, इहदिना लिस्सिरात। लाम इस्तेमाल होता है, लाम हर्फुल गाया इसको अरबी में कहते हैं, आखिर तक पहुंचाने के लिए। यानी मैं किसी से कहूँ कि सर आपने हस्पताल की डायरेक्शंस तो बहुत अच्छी दे दी, मेहरबानी करके आप मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठ जाए ना और मुझे वहां तक पहुंचा दें, अब मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, या आप मेरे साथ फ़ोन पर रहें जब तक मैं पहुँच नहीं जाता। तो क्या किया, जो इंसान आपके साथ सारा रास्ता रहे जब तक आप मंजिल तक पहुँच ना जाए, उसने क्या किया, इहदिना लिस्सिरात, हमें आखिरी मंजिल तक पहुँचने तक हमारे साथ, हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ ही रहें। हम कुरान में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत के बारे में कहा जाता है, जन्नत में पहुंचने के बाद अहले ईमान कहेंगे अल्लाह हमें उन सब में से बनाए, वो हम कहेंगे अल्लाह ताला के लिए हमद है जिसने हमें यहाँ तक हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना ली हाज़ा। लाम इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है अल्लाह ताला हमारे साथ पूरा रास्ता था यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ पहुँचाने तक, यह है ली। अच्छा, फातिहा में ना अहदिना अलस्सिरातिल मुस्तकीम है, ना अहदिना अलस्सिरातिल मुस्तकीम है, ना अहदिना लिस्सिरातिल मुस्तकीम है, बल्कि कोई हर्फ है ही नहीं, सीधा सीधा है क्या, अहदिना अस्सिरातिल मुस्तकीम, बग़ैर हर्फ के। तो क्या मायने हुए, इसको कहा जाता है अलउमूम अलिश्माल, यानी तमाम हर्फ शामिल हैं, इनमें से अगर एक हर्फ भी इस्तेमाल किया होता ना तो बाकियों का हक अदा ना होता। सुबहानअल्लाह। क्या मालूमात चाहिए जन्नत तक पहुंचने के लिए, इहदिनस सिरात शामिल है। रस्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी उनको कैसे समझा जाए, इहदिना अलस सिरात शामिल है। अल्लाह ताला हमारे साथ सारा रास्ता हमारे साथ रहेगा, हुआ माहकुम ऐना मा कुंतु, उसकी मैयत उसकी सोबत हमारे साथ रहेगी, इहदिना लिस सिरात। और वो सब शामिल करके एक ताबीर में इहदिना सिरात, सुबहानअल्लाह, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब ये अस्सिरात के बारे में कुछ, इहदिना और अस्सिरात के ताल्लुक के बारे में कुछ बात थी। अब आगे मुख्तसर बात करते हैं सिरात के लिए, रास्ते के लिए, सही रास्ता या सीधा रास्ता तर्जुमा होगा ना उर्दू में अस्सिरातुल मुस्तकीम का। सिरात के लिए अरबी में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, सबील का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तरीक इस्तेमाल हुआ है और सिरात भी इस्तेमाल हुआ है, तो इनका थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। तरीक असल में तरक़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसी दस्तक देने पे, तरक अलबाब दरवाजे पर दस्तक दी, जिस रास्ते पर लोग चलते रहे ना बार बार और उस पर कदम के निशान बन जाएं और फिर उस पर घास उखनी बंद हो जाए और पता चल जाए कि इस तरफ से लोग चलते रहे कई दफ़ा, उसको तरीक कहा जाता है। यानी लोगों के ज़्यादा चलने की वजह से वो तरीक बन गई, ठीक है, उसे तरीक कहते हैं। और ये आमतौर पर छोटे रास्ते होते हैं, ये लंबे रास्ते नहीं होते, ये छोटे रास्ते होते हैं। اور جو چھوٹے راستے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ کو ایک بڑی روڈ کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے جو ذرا ایک بڑی سائز کی روڈ ہوتی ہے اس کو سبیل کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جو طریق ہے وہ آپ کو سبیل تک لے جائے گی, طریق سبیل تک لے جائے گی. اچھا سبیل کیا ہے؟ سبیل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے سبل, سبیل اور سبل. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو طریق چھوٹا اور بہت زیادہ چلا ہوا, اور سبیل اس سے ذرا بڑا راستہ. اچھا اور سبیل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ سبل. اچھا طریق کی جمع ہے طرائق اور طرق دونوں. طرائق قرآن میں استعمال ہوا ہے, کنہ طرائق قددا سورۃ الجن میں. اچھا خیر صراط عجیب لفظ ہے, اس کی جمع نہیں ہے. طریق کی جمع ہے طرق اور طرائق, سبیل کی جمع ہے کیا؟ سبل. صراط کی جمع نہیں ہے. کیوں؟ یہ صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روڈ نہیں ہے. جیسے دو آئلینڈ ہیں ان کے درمیان ایک ہی برج ہے, وہ برج کیا ہوگا پھر؟ صراط. کیونکہ اس ادھر پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس, ایک ہی راستہ ہے. تو طریق سے انسان سبیل پہ پہنچے, اور تمام سبیلیں جا کے کہاں ملیں گی؟ صراط پہ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا شروع ہونے والا راستہ کوئی اور طریق یا کوئی اور سبیل ہو, یا کوئی اور سبیل ہو کوئی اور سبیل ہو, لیکن بعد میں جا کر سب ایک جگہ کہاں ملیں گے؟ صراط کے اوپر. نا صراط کا لفظ, کیونکہ اس کی جمع نہیں ہے, اس کے اور بھی معنی ہیں. صراط کا لفظ اصل میں آتا ہے صراط سے, پیش کے ساتھ صراط. اور صراط عربی میں کہتے ہیں ان کی مختلف قسم کی تلواریں ہوتی تھیں. کچھ تلواریں جو ہیں وہ ذرا مڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور کچھ تلواریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. جو جو جو موٹی ہو, چوڑی ہو اور سیدھی ہو, اسے صراط کہا جاتا ہے. اسی سے نکلا لفظ, جو سڑک کشادہ ہو اور بالکل سیدھی ہو اسے صراط کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور تمام چھوٹی چھوٹی سڑکیں, طریق اور سبیل اسی میں آ کے ملتی ہیں. اس لفظ کے استعمال سے بہت فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, ایک دفعہ ایک راستے پر اس راستے پر انسان آ جائے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اب کس طرف بڑھیں کس طرف نہ بڑھیں, کیونکہ راستہ کیسا ہے؟ بالکل سیدھا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ بس ایک ہی؟ نہیں, ایک ہی راستہ ہے. اس میں ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا ہوتا ہے. یعنی منزل تو واضح ہے کہاں ہے, لیکن سفر لمبا ہے, سفر لمبا ہے. اب کیونکہ کشادہ ہے, کشادہ ہونے میں کیا فائدہ ہوا سوچے ذرا. ہاں بہت سارے لوگ ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں, ایک لین نہیں ہے, ملٹیپل لینز ہیں. کچھ لوگ اس پہ زیادہ تیز چل رہے ہیں, کچھ لوگ آہستہ چل رہے ہیں, کچھ لوگ ابھی نئے نئے کسی سبیل سے جا کے اس میں شامل ہوئے, کچھ لوگ آپ سے ہزار میل پیچھے ہیں, کچھ لوگ آپ سے ہزار میل آگے ہیں. آپ کو کچھ لوگ اپنے سے آگے نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے سے پیچھے نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگ آپ سے کئی سالوں پہلے اس پورے رستے سے گزر چکے, آگے آخر تک پہنچ چکے, آپ پیچھے رہ گئے ہو. لیکن مقصد بس ایک ہی ہے, یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں اس روڈ پر سب سے تیز گاڑی دے دے, اس روڈ پر ہمیں سب سے تیز چلا دے. ایک بات مانگی ہے, ہدایت دے دے کہ جس بھی رستے سے ہم شروع ہوئے ہو اس سڑک تک ہمیں پہنچا دے. بس ایک دفعہ اس سڑک پر آ کے جس رفتار سے چلنا ہوگا یا جس کے ساتھ چلنا ہوگا اس کی فکر ہمیں کم ہے. کم از کم کیا ہے کہ ہم اس سڑک پر ہیں. اب اس سڑک پر آنے کے بعد کوئی حافظ قرآن ہے جس کو عربی بھی آتی ہے, تجوید بھی آتی ہے, عالم بھی ہے, اس سڑک پہ آنے کے بعد کوئی 55 سال عیسائی تھا کل مسلمان ہو گیا, اب وہ اس سڑک پہ, وہ پیچھے اس کو الف با بھی نہیں پتا, اس کو نماز بھی ٹھیک سے بھی پڑھی نہیں, انگلش میں نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سڑک پہ کوئی 90 سال کا ہے, اس سڑک پہ کوئی 12 سال کا ہے. ہر ایک کی سپیڈ مختلف, ہر ایک کا لیول مختلف, ہر ایک کا علم مختلف, ہر ایک کی شروعات مختلف. وہ کوئی کسی سڑک سے شروع ہوا تھا, کوئی کسی سڑک سے, کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ, کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ, کسی کی کوئی مشکلات, کسی کی کوئی مشکلات. کوئی اس سڑک پہ دو لوگ اکٹھے شروع ہوئے اور ایک بہت جلدی آگے نکل گیا, اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے, कोई बात नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दुआ में हमने मंजिल की तलब नहीं की, सड़क की तलब की है। अजीब दुआ है, हिदायत मांगी जाती है मंजिल के लिए, हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती है। आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं, आपका मकसद क्या है? बस सड़क नहीं, सड़क से कहां जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो। आपका असल मकसद होता है सड़क कहां लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है, या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है। इससे हमें क्या सीखना है? हमें सीखना यह है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफर से दिलचस्पी ज्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफर में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हजार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना, ना। हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले दो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उनू में बादी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है एहदिना सिराता मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज रह गई और वो ये है कि
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
0: जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीजें लाल नजर आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नजर आती हैं, कुरान हो तो सारी चीजें कुरान के लेंस से नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नजर आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
7: Leegrade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Hi, my name's Hayley and I'm from Bedford.
9: My name is Saba and I'm from London.
10: My name is Mari and I'm from Luton.
11: My name is Ellis and I'm from Hartford.
12: My name is Cal from Luton.
13: My name is Clarice, I'm from Hackney.
14: My name is Lee, I'm from Luton.
15: My name is Naji and I'm from Middlesbrough.
16: My name's Nadia, I'm from St Albans.
17: My name is Yasmina, I'm from London. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
18: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
19: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
20: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
21: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Hidayat sadak ke liye nahi mangi jati. Aap mujhe bata dein sadak pe kaise pahunchu. Aapka maqsad kya hai? Bas sadak nahi, sadak se kahan jayenge? Bas aap sadak pe pahuncha dein, baki mujhe koi fikr nahi. Ye kaisi baat kar rahe ho? Kabhi bhi nahi hota ki aapki asal ghayat, aapka asal maqsad sadak ho. Aapka asal maqsad hota hai sadak kahan leke ja rahi hai. Lekin is surat mein हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है।

0: इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रस्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तकून में बैदी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है एहदिना सिरात अल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर एहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता वैली था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान हैं और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पे चल रहा हूं और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंदर, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। वापस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं लेकिन उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही है, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पर हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसकी उसका जो मंज़र है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुँचे हुए ना,
1: वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहता है मुझे ये नजर आ रहा है, कहता है क्या पागलवानी बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या है यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है पता है, क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। اهدنا الصراط المستقيم, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नज़र को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहां तक मैं जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूं, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुब जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिराते मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय दिस सेशन। ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़ेह हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस्सिरात अल-मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल-मुस्तकीम अल-लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल-मुस्तकीम अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम, और मुख्तलिफ़ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनआम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिराते लज़ीना अनअमत अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका है और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी, माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत राफ्ता है, याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है। इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। और ये भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहिब में क्या हुआ पता है? हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग उन पर 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं हैं? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर वाकई वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं वो तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं? वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में हैं, वो सब माजी में, उनकी मिसाल हमने लेनी है। और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदत मंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है, अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह और बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज़ लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज़ से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो हम मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे, तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा, सीरत में तो मुझे यह मिल रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीन अनअमता अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुज़ुर्गों की और अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंगर नौजवान था तो कुछ हलकात में कुछ बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछता हूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है। जैसे एक दफ़ा हजरत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में सिरात लदीना अनअम थाने, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं,
0: लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हमें आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीजी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाज़े खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फहम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल, तुमने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ वो बात, कहते हैं फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन और बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतीजे पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात-ए-लज़ीन अन्अमता अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुज़मर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक़ है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात-ए-लज़ीन अन्अमता अलैहिम। फिर दूसरी बात यह भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमता अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में फ़ाउलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीका, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अम्बिया की बात को सच माना, शुहदा आप जानते हो शुहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताएं। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अम्बिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं हैं। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहाँ से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद, यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरात-ए-लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरात-ए-लज़ीना अनअमता अलैहिम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.